0: मैंने वो जिया कोई बागा के लिए ले जाऊँगा मैं ये लोग चिकुला पहुँचे ची मजोग का पहुँचा पहुँचे ची देखो चिकुला नूल को इंसान मोंसा नहीं कोई जो का फिगा जो वो फिगा जो मैं बेरम टाइम में वही नाली बो मामा अब पहुँचे ची आप भी नाली बो ये ना सुन कंजाली बो वो का बंदा को बेरे वो ये को निम्बा वांगा शाशुंबो ये वो जो कि तुम वर्ष पसार ये तो प्रमेट आरे Inu laga ni nila na mene wa mabungu ingambiri mbili Yolo mura jango ze feo guno go Utaja tu zini Ena mahilo ulumbiri la Ninge va psara kine sasa Ninge Ninge skiru mapso Skiru Ninge vivo Ninge va psara Ndeku suru komo ponze isa And how in this is a clown.
1: Rádio Moçambique, Tete. Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.